जम्मै खडेरी ढुर बनख भुर्र उठ्थु। तब तू मोरलाक पानी बनख बरसठ। एक गची के मिलन के बाद वो एक काम के प्रकाश तू इन बाप बना कर उड़ा कर फिर से मन से दूर ले जा। ये प्रकृति के नियम हमा मिलन असंभव बा, कारण तू बद्री मैं धरती। हाँ वो एक दूसर से दूर रख पे करण कब्बुनी और रेना मैया के एक उदाहरण हो दिल के पता। वो एक अटूट मैया के अंश हो दिल के पता।

0: टे बुटवल 11 रूपन्देही फोन 071-420-117 मोबाइल 9807788919 मणि मुकुंद कैंपस लर्न टुडे लीड टुमारो
1: रेडियो लुम्बिनी 96.8 मेगाहर्ट्ज